0: राष्ट्रपति
1: जय प्रसाद शक्ति अमृत खाए
0: तेसा चर को रख मन माए
1: जय प्रसाद सुगंध धन लावे
0: तेसको सिमरत परम गत पावे
1: जय प्रसाद बसेस को मंदर
0: तेसे ते आए सदा मन अंदर
1: जय प्रसाद गृह संग सुख बसना।

0: अमृत गुण गाए
1: साधके संग सर्वथान गम
0: नानक साधके संग सफल जन्म
1: साधके संग नहीं कछ काल
0: दर्शन पेटत होत निहाल
1: साधके संग कलुखत हरे
0: साधके संग नरक पर हरे
1: साधके संग यहाँ सुहेला
0: साध संग बिचरत हर मेला
1: जो इच्छे सोई फल पावे
0: साधके संग ना व्यर्था जावे
1: पार्वम साधरत बसे
0: नानक उतरे साध सुन रसे।